ना को होए। जेवड़े आप तेवड़ तेरी दात, जिंदन करके कीती रात, कसम सारे ते कम जात, नानक नामे बात सुनात। राग गुजरी माला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो।

संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तोर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नान मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा,

सुके कास्त हरियाराओ। जनन पिता लोक सतबंता कोई न किसकी धरिया, सिर सिर समाहे ठाकर काहे मन भाव करिया।

जो कल को एक बार ते आई है ताके काल निकट नया है रचावे ताए सब काला दुष्ट।

सब वैरियन संगारो। प्रथम तरो पवद को ध्याना बोर करो कविता विदनाना किसन जता मत चरित्र उचारो चूक होए कवले ओ सुधार।

सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी।

अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पिखणा सरवणी सुनना गुर नाओ।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। तिस साहिब की टेक नानक मने माए, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

थी। दुनिया ना साला है जो मरवंज सी, लोका ना साला है जो मर खाक थी। वाह मेरे साहेबा वाह, गुरमुख सदा सलाहिया सच्चा वे परवाह रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जमपुर बदे मारिया वेला नालहन। गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन। गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिशना भुख न उतरा आनंद न जलत फिरन।

0: इतनी सेवा प्रवान करनी जी। अगला प्रोग्राम पाठ प्रसारण करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु की फतेह। धन्यवादी हाँ सत्कारयोग ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी, मुख सेवादार गुरद्वारा साहब फ्रीमाउंट, ज्ञानी जगतार सिंह जी, ज्ञानी जजार सिंह जी, जिन्हां ने आरती कीर्तन अते गुरु जी दी महाराज दी बाणी शब्द कीर्तन आप संगतां नूं सरवण कराया, इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें जून दा इह महीना चल रिहा है, इह शहीदी हफ्ता गुरद्वारा साहब फ्रीमाउंट विखे, ये जो आप सारे शहीदों याद कर रहे हैं, आप संगतों को पता है अनाउंसमेंट करते आ रहे हैं कि धन धन गुरु अर्जन देव जी पातशाह की शहादत 1984 दे दरबार साहब के अटैक के घल्लूकारे दे जो शहीद सिंह वा उन्हां दी याद में सैन फ्रांसिस्को विखे ये 14वीं जो पातशाही रैली नगर कीर्तन कढ रहे हैं, तो आप संगतों का सहयोग चाहिए। गुरद्वारा साहब बाकी जिन्हें भी आ कमेटियां जथेबंदियां ये रल के एक ये प्रोग्राम आ जिहड़ा इत्थे वख वख गुरद्वारे च अपने अपने नगर कीर्तन करते आ, पर यह जो प्रोग्राम आ ये सारे गुरद्वारे जो प्रबंध जथेबंदियां सारे रल के ये जो प्रोग्राम करते हैं। बच चढ़ के आओ, गुरद्वारा साहिबाना तो बसा चलनिया, अज टक शो भी होया सी, सारी संगत नू बेनती की आ, वख वख गुरद्वारियां दे प्रबंधक टक शो ते पंजाबी रेडियो USA ते बोले आ। सो मैं बेनती करदा कि ये बहुत साडे लई इतिहासक अते आपां ये जो दिन वा ये मनाउणा, क्योंकि मैं एक घटना तुहानू दसणी आ, जदों अज दे दिन 4 जून नूं कुछ गुरु दे प्यारे सिंह लड़दे लड़दे संत बाबा जरनैल सिंह नूं कहिंदे कि संत जी कुछ छकण नूं दिल करदा, भुख लगी हुई आ, ते संत जी मोहरों मुस्कुरा के कहिंदे आ कि गुरु दे प्यारे ओ सिंघो, हुण 10वें पातशाह को जा के आपां सारे छकांगे, ते कहिंदे कि उस टाइम ओ गुरु दे प्यारे सिंह उन्हां दे रफलां जो अपने उन्हां दे हथियार सी उन्हां दे मूँह उस टाइम दुश्मन वल नूं हो गए, ते लड़दे लड़दियां ने उन्हां ने शहादतां प्राप्त कीतियां। अज 4 तरीक अज दे दिन तोपां टैंकां दे नाल गोले दागणे शुरू कर दित्ते सी, ते बहुत ही अज दा दिन जिहड़ा 4 तरीक वैसे तां सारा हफ्ता ही 7 तरीक ताईं इदां ही चलिया, ते 3 तरीक नूं कल दे दिन जो कल निकलिया, ते 2 साडियां भैणां जो इतिहास दरौंदियां होईयां शहादत प्राप्त कीती, कहिंदे संत जी ने कहा कि धीओ तुसीं घरां नूं चल जाओ। वह धीआं कीहड़ियां सी? ओह बीबी उपकार कौर अते बीबी परमजीत कौर, ये दोनों बीबियां ने माई भागो का इतिहास दराता सी। इन्हां ने जदों जिहड़े बुंगे ते इहनां दा मोर्चा सी, जदों कमांडो उन्होंने अज दे दिन उतारी, तो एक भी कमांडो वाला जिहड़ा थले नहीं उतर दिता, ये दोनों बीबियां ने, तो इन्होंने जूझदियां होया शहादत प्राप्त की सी। बीबीओ अते तुहाडा बड़ा सहयोग है, अते वीरां नूं भी मैं बेनती करदा, तो परसों नूं शनिचरवार नूं 5 बजे लंगरां दे विच प्रशादियां दी सेवा होनी आ, जिन्हां जिन्हां बीबियां ने आ के सेवा विच योगदान पाउणा जरूर आओ, आपां शहीदां दी बख्शिश लईए ते उन्हां महान शहीदां नूं याद करिए। आओ हुण दमदमी टकसाल दे सत्कारयोग भाई कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल आप संगतां नूं कथा दे नाल जोड़नगे। दमदमी टकसाल ने इस विच बहुत योगदान पाया, तो सरबत खालसा बुलाया दमदमी टकसाल वालों, तो लखां दी तादाद दे विच सरबत खालसा उत्थे इकट्ठे हो के पंथक कमेटी बनाई, तो उन्होंने ये संघर्ष अगे जारी रखिया। तो मैं ज़्यादा समा ना लम्मा आओ मैं बेनती करदा सत्कारयोग भाई कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल वाले, वो आप संगतां नूं गुर इतिहास गुरबाणी दे नाल जोड़नगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

बिन शब्द सुध न हो वई जे अनेक करे श्रृंगार पिरकी सार न जाने दूजे पाए प्यार साक सुध साकु लखणी नानक नारी बिच कुनार पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी हर नाम त्याई हर उच्छरा हर लाहा लैणी

पहला गगन में थाल रवचा दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराई फूलंत ज्योति कैसी आरती हुए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ सहस्तव नैन नन नैन है तो एक आओ सहस मूरत नना एक तो ही सहस पाद विमल नन एक पाद गंध विन सहस्तव गंध इवचलत मोही सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिस्ते चानन सब मह चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत सुपावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे हे नानक सारंको होए जाते तेरे नायवासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भौ परया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरलि मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर साध ने जानिया तिन अंतर हमें कंडा है ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावह जमकाल सह सिर डंडा है हर जन हर हर नाम सुमाणी दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरुख पाया परमेश्वर बहुसोब खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला यहाँ खाड़ चलो हर लाहा या गै बसन सुहेला औद घटै दिन सरै नारे मन गुर मिलका सुवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पे आवै एहो रासे अकथ कथा ते जानी जाखो आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन ही बसेरा।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

पंचवा श्लोक एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आद गुर ए नम है जुगाद गुर ए नम है सतगुर ए नम है श्री गुरुदेव ए नम है अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पाव काल क्लेश तन माह मिटाव सिमरो जास विषम पर एक नाम जपते अगमते अनेक वेद पुराण सिमरत सुधाख्यर कीने राम नाम एक आख्यर

की तुम ऊपर श्याम जहां त्रिखा मन तुझा करख तह नानक हर हरे अमृत बरख भगतना की बर्तन नाम संतना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदर जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान बन तन रंग रते रंग एक कै नानक जन कै बिरत विवेक कै

मंत्र आप है पेखे अनेक अगन नहीं बुझे कोड़ उपाव दरगह नहीं सिजे छूट सना ही उपयाल मोहे बयापे माया जाल अवर करतूत सगली जम दाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सही सुपाहे चार पदार्थ दिन को मांगे साजना की सेवा लागे

मिटाए अभिमान। आपस कहो जो जाने नीचा सो गणिये सब ते उचा जाका मन होए सगल किरीना हर हर नाम तिन कर कर तीना माने अपने दे बुरा मिटाना पेखे सगल शरीर साजना सुख दुख जन समदृष्टे ता नानक पाप नहीं ले पा निरतन कहो तन तेरो नाव निथावे को नाव तेरा थाव निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को दे बहुदान करण कराम हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी कदमित जान हो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्त तुम ते हो नानक कबर न जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मह उद्दम पला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जास सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक देह घट वसे हर नाम सलोक निर्गुण यार एनया सो प्रभ सदा संभाल जिनकी आत चीत राख नानक निभी नाल अष्टपदी।

सुख सूद बिरद पया ऊपर साग सैन मुख्य पया बैठ कव दैन एहन एहो निर्गुण गुण कछु ना बूझे बक्सले हो तव नानक सीजे देह प्रसाद धारु पर सुख बस है सत प्रात मीत बंता संग हस है जिह प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव के अमुला जिह प्रसाद भोगे सब रसा सगल समगरी संग साथ बसा दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे ते आंग अवर संग रचना से दोख मूढ़ अंध व्यापे नानक काढ़ ले हो प्रव्यापे आदे अंत जो राखन हार तिस स्यों प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नाव निध पावे ता से मूढ़ा मन नहीं लावे

सुख नेहरे कोई न जाने तुम राम तू थे ते उचा भगवंत सगल समग्री तुम रह सूत्र धारी तुम ते हो सुआ्ञाकारी तुमरी गदमे तुम ही जानी नानक दास सदा कुरबानी सरोख

करत अवर लुभावे जिह प्रसाद सुख से सोई दे मनु आठ पहर ताल का जास गावी जय जिह प्रसाद सब को माने मुखता को जास रसन बखाने

लाभ होत राम स्नेही जे प्रसाद रहो ला रहत मन सुख पाव हर हर जस कहत देह प्रसाद रे सगल सिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभुता के देह प्रसाद रिको न बहुचे मन साह साह सिमरह प्रभु चे देह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकि भक्त करे हम।

सचितारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिम रहो सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जिह प्रसाद सुनह करन नाद जिह प्रसाद पेखे बिस्माद जिह प्रसाद बोलह अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहने बसना जिह प्रसाद हत कर चल है जिह प्रसाद संपूर्ण फल है जिह प्रसाद परम गत पावे जिह प्रसाद सुख सह समावे असा प्रभ त्याग बरकत लागहु गुर प्रसाद नानक मन जागहु जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस ब्रह्म को मूल न मनो विसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर तू ताको जाव जिह प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिस हे जान मन सदा

गायन साधक संग सर्वथान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कस काल दर्शन भेड़त होत निहाल साधक संग कलुहत हरे साधक संग नरक पर हरे साधक संग ईहा ऊहा सुहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साधक संग न विरथा जावे।

प्राव संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम प्रवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अभुत आगत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख छाय निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।

नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रभात, ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार, ब्रह्म ज्ञानी आवरिंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बणी नान, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि सलोक,

परस सगल निस्तारे अष्टपदि मिथ्या नाही रसना परस मान मह प्रीत निरंजन दर्श पर त्रय रूप ना पेख नेत्र साध की टहल संत

कारस्पदी कई कोट होए पुजारी कई कोट अचार व्यवहारी कई कोट पहदीथवासी कई कोट बन ब्रह्म उदासी।

सगले बृथारे अनकृत पस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रव हर दर गह कहो कैसे गवे आपको जो पलाक आवे तिसे

चीत जब लंग मोह मगन संभाय तब लंग धर्म राय देश जाय प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हाँ शिव टै।

कृपा करहिं बड़भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो किस करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसे हर संग।

देह देश प्रगटाय निकी गिरी मह कल राख पसम कर लस्कर कोट लाख जिसका सास न काटते आप होता कौ राखित दे कर हाथ मानस जतन करत बहुपात तिसके करत बिरथे जात मारे राखे वरन कोय सर्व जिया का राख सोय काहे सोच कर हिरे प्राणी जप नानक प्रभ लक्ष्मी रानी बार बार बार प्रभ जपिये पी अमृत हो मान तन त्रपिये नाम रतन जन गुरुमुख पाया तिसके शबर नाई दृष्टाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुखर नाम कसंग नाम रास जो जन तृप्ताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठ सोत

रंगराता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं काश परम सहस सियान पलाया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पनीत परसत चरण गात निर्मल रीत भेटत संग राम गुरु रवे पार ब्रह्म की दरगह गावे सुन कार बचन करन आगाने मान संतोखा तुम पतियाने पूरा गुर खेव जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेख है होए संत

मन में राखे हर हरेक। अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तै तेरासे तब तुम्हारे ठान वरताई अंत भय दुख नाठे पाही जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उदेसे।

प्रजावस्पति जब कार्य कहना दृहतेता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध के संक बात।

मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कह किस होए। जब अवगत गोचर प्रभ का तब चित्र गुप्त केस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप ही अचर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा।

साध संग नानक हर ध्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान देर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी

0: तेह जने आवे हर प्रवतीद जन्म मरण ताका दुख निवारे दुलाभ देहत दुकारे उदारे निर्मल सोभा अमृता की बाणी एक ना मन मान समानी दुख रोग बिन से पह परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब त्यों ताकी सोभा बनी नानक नाम सुखमनी सब त्यों ताकी सोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख

है, अभय है, अजीत है, अभीत है, त्रमान है, निधान है, त्रवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अभंज है, अजूज है, अचंज है, अमीक है, अर्फीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भूज है, सूज है, अकाल है, अजाल है, अलाव है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरशरीक है, निर्लम्ब है, असंभ है, अगम है, अजाम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अभीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिरेक है, पुजंग, प्रयाद, छंद, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अभेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्वभौणे अनंगी अनाथेन्द्र संगी परमाते, नमो भान भाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ति विभूते कलंक मनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राज स्वरंग परम रूपे, नमो जोग जोग ए स्वरंग परम सिद्धे, नमो राज राज ए स्वरंग परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाने, नमो अस्त्र माने, नमो पुर परम ज्ञाता, नमो लोक माता भेखी अभरमी अभोगी अभुगते, नमो जोग जोगे संग परम जुगते, नमो रित नारायण क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रे देवी धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाह नमो पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो संसनाने, नमो मंत्र मंत्र, नमो जंत्र जंत्र, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्र, सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी नृपे रूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धा बुद्धा बृदर्ता अदो वृद अर्दंग अगंग ओघर्ता, परंग परंग परमेश्वरंग प्रोष पालंग, सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग, अशेधि अभेदी अनामंग अकामंग, समस्तो पराजी समस्तस्तामंग, तेरा जोर चाचरी छंद, जले है, थले है, अपीत है, अपेह प्रभु है, अजू है, अदेश है, पेश है, भुजंग प्रयाद छंद, अगाधे अबाधे अनंदी सुरभे, नमो सर्वमाने समस्ते निधाने, नमास्तुंग नरनाथे, नमास्तुंग ब्रह्माथे, नमास्तुंग गंजे, नमास्तुंग पंजे, नमास्तुंग काले, नमास्तुंग पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वेशे, नमो राजराजे, नमो साजे, नमो शाहे, नमो माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सुख सुखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतंग, नमो सर्वपीतंग, नमो सर्वज्ञानंग, नमो परमतानंग, नमो सर्वमंत्रंग, नमो सर्वजंत्रंग, नमो सर्वदृसंग, नमो सर्वग्रसंग, नमो सर्वरंगे तरभंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग सुरभे गुर कर्मंग प्रणासी, सदा सर्वदा रिदंग निवासी, चरपट छंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगया चल भोगया चल राजे अटल साजे अखल धर्म अल्लाह कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने।

भक्त विरक्त नास प्रकाश नजंत सुनंत अलख दिख लेख पेख अटाह अगाह असंभ अगम अनिल अनाद अनत सुनत अजात।

सगरीषष्टुधिकाय अचम्बव्याजुगा स्वरूप स्वयं भव अभ्रच्छा मेरी तुम करो सिखो बार आसिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रण गाता जे आस तो जिताब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन भग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो गल कोई कबार ते आह ताके काल निकट न आह अरछा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारो ताके ताप तनक में हरो रेत सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट जा सब सके ना कोई एक बार जिंद में सभारा काल भाते ताहे उबारा

सहाय दुष्ट दोह ते लेहो बचाय। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, गलभ सकल दे को हरता, दुष्ट दुखिन को शय करता।

सुने मुड़ लाए चतुर्था भाई दुख दर पाओ निकटना तिन्नर के रहा है वो जो जाकी एक बार चौपाई क्यों कहे चौपाई समत सत्रह सहस पणजा अर सहस पुनतीन कह जा भाद्रव सुधी अष्टमी रवारा तीर सदर्भ ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते गुआक तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक अहमद एक नाम आने सिमर शास्त्र।

संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनमंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। श्लोक

मुक्तियां हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमृत कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान तरके भूलना जी जिन्हां सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते

सोने तख्तां ते प्रकाश मन हो के दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जिया दा कोटान कोट धनवाद शुकराना है। अमृत वेले तो आप दी पावन हजूरी विच सुखमनी साहब जी दे पाठ पांच बाणिया दे नेतनेम आसा जी दी वार दे कीर्तन होए उपरंत सच्चे पातशाह जी आप जी वल्लों बख्श मुख

संत जना की जादर स्वामी तुम ठाकुर हम सांगी, जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी।

तुम्हार सर्वर अत गाहा हम लह न सके अंत माती, तू पर परम पर स्वामी मैं तो जानू आपन गाती।

अदृष्ट गोचर अपरंपर स्वामी गुरपुर प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काश लोष्ट।

था चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मोन जान सब चाहे हर जीव तेरो नाऊ।

चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद पव खंडन दुख पंज स्वामी भगत वश्यंद्रंकारे।

शरण परे की राख शर्मा सुख टल गुर सेविया अहनस सहज सुपाए दर्शन परस्यां गुरु के

आनंद सुनो बड़ भाग्य सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप तरे सुने सच्ची वाणी संत साजन पै सरस पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते।

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाही दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी धार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई देख वाही देख के अमडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी सिदके सां सुवासां संग निभाया। तिना समूह शहीदा दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै। चेतावन का सदका सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रैह दान विवेक दान विसाहु दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान।

ज्योतिबा वसाई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंधकोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड़ हत्या कमाहे है।

हरके जन सदगुरु सह प्रकाव करो गुरु पास हम कीरे करम सदगुरु सरनाय कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम रे प्राण सखाई हर कीरत अमरे रह राहाओ अर्जुन के बड़ भाग बडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर नाम मिल त्रिवता सह मिल संगत गुण परगास जन हर हर हर रस नाम ना पाया ते पागिन जम पास जो सदगुरु शरण संगत नहीं आये त्रै जीव त्रै जीवास जन हर जन सदगुरु संगत पाए तन धर्म सग लिखिया लिखास धन धन सत संगत जिथर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास

पुरख निरंजन हर अगमागमा पारा सब त्याव है सब त्याव है तुझे अर सच्चे सिर दिनहारा सब जी तुम्हारे जी तु दिया का दा तारा हर त्याव संतो जी सब दुख विसारण हरा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नारे जंत विचारा तू गड़गड़े अंत सर्व निरंतर दी हरे को बुरख संभाड़ा एकदा तेग पे खारे जी सब तेरे चोज बिनाड़ा तू आपे दाता आपे भगता दी हो तो मैंने वरना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख खाना जो सेव है तुझे जन नानी तिन कुर्बाना हर त्याव है तुझे से जंजुग में सुखवासी से मुकत से मुद भय जन हर त्यादि तिन तुटी दम की भासी जिन निरभव जना निरभव त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जीते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरे भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाह तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक कर हर पूजा जी तब ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक प्रणाम सिमरत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत बल जन नानी दी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आज प्रख्या परम्पर करता जी तू देवड़े अवरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नैचल करता सोई तुझे आपे पावे सोई वरता जी तू आपे करह सो होई तुझे आपे सिर सब उपाय जी तुदा पे सिर सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचे आर मन दासाई जो तो पावे सोई थिसी जो तुद सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तो सब ने ध्याया जिसनु कृपा कर तन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुदा बिछुड़े आप मिलाया तुंदरी आओ सब तुझ माए तुझ बिंदु जा कोई ना जी जन सब तेरा खेल जोग मिल बिछड़िया संजोगी मेल जिसनु तू जाना है सोई धन जाने हर गुण सदी आख खाने जिन हर से व्यतन सुख पाया स दे हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तो बंधु जाबर न कोय तू कर कर वे खा जाना है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तेसर वर्डे पहले निवासा पानी पाव तिन किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक नचे मूड बना

पंजमा पै प्राप्त मन खुदय हुरिया गोविंद मृण किया तेरी वरियावर कायत्र तैरना कामर सात संग पै केवल नाम सिरंजा लोप जल तरण के जन्म बिरथा दातन माया के राहौ जप तब संयम तरम ना कमाया सेवा साधना जान्या हर राया कौ नानी कम नीच कर्मा शरण भरे।

बाबा जाकर करते किर तो ऐसो का राखो डाई तो राहो विश्वाय सिया कड़िया पैरा थे तिवारी माँ हुआ सुर देखो रुत अनेक नाने करते के ते वे सुराग तुना श्री महला पहला गगन में थाल राव चंदीपक बने तारिका मंडल जन कुमोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होय पव करना तेरी आरती अनहता सब

नानातो को सास्मृत नानक तो ही सहस पद विमल नानक पद गंध बिन सहत गंधव चलत मोही सब मैं ज्योत ज्योत सोएत द चरण समय चरण होए गुरु साखे जोत प्रगट होए ज्योत भाव सो आरती होए हर चरण कलम ग्रंथ लोभत मनो अनदनो मोह आय प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को जाते तेरे नाय वासा राग औड़े पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो परया मिल साधु खंडल खंडाए पूर्व लिख तरके गुरु पाया मनल मंडल मंडा है कर साधु अंजुलि पुन वडाए कर दंडोत पुन वडाए राव साकत रसाद न जानिया तिन अंतरों में खंडाए ज्यो ज्यो चला सुबह दुपावे जम खालसा है सिर डंडा है हर जन हर नाम समान है दो जन मन पव खंडाए बिना शिव गुपाया परमेश्वर शुभ खंड।

गो फेरा अंतरजामे पुरख वधाते सरदामन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे मुख का।

जी ने शब्द बना सीए काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मोले बोले नहा गम गुण ना सेवा साधी डूबते पत्र में अल्लाह तुम अपे सच नाम बना सीए ना को करे ना करने जोगा पे करे करावे सो होएगा पे पक्ष ले सो पाए सदी नाम निवासी है एत तन तत्ती शब्द बीज अपारा हर सच सिद्धि बन जपारा सच तन जम्या तो उठना आवे अंतर नाम निवासी है हर जो गुण गारे नो गुण कीजे आपे बख्श ले नाम दीजे गुरम होए सो पद पाए कित नाम निवासी है अंतर हर तन समझना होई गुरु प्रसादी बूझे कोई गुरम होए सो तन पाए सदी नाम निवासी है अनुभव परम भलाई माया मोह सुध नकाई मन मुखन दे कृष्ण बसूजे गुरमत नाम प्रकाशी है हम मन मुखे माया सूते अपना कर ना संभाले अंत बिगूते पर निंदा करे बो चिंता जाले दुख दुख निवासी है आपे करता कार करावे आपे कर्म दे बजाए नानक नाम मृत मन निर्मल नामे नाम निवासी है नारू महला तीजा एको से भी सतर साचा दूजे लागा सब जग काचा गुरमत सदा सच सलाई सच ही सच भतीजे है तेरे गुण गो बहुते मैं एक न जाता आपे लाए ले जग जीवन दाता आपे बख्शे देव डे गुरमते मन पीजे है माया लहर शब्द निवारी मन निर्मल होमे मारी सबजे सजे गुण गावे रंग राता रसना राम रिवीजे है मेरे मेरी करत बिहानी मनुख न बूझे फिर आनी जम काल कड़ी मोत निहाले अंदर आजा सीजे अंत लोक रेनी बूझे सिर पर जमकाल न सूजे चिक मोना सुहागे आए अंत काल क्या कीजे है जो सच लगे सो तन साची सोए दूजे लागे मनुख रोए दुआ सिरे का खसम आपे आपे गुण में पीजे है गुर के शब्द साजन सोए नाम रसायण मन मोहे माया मोह मैल पतंग न लागे गुरमति हर नाम पीजे सबना विच वरते कसोई गुर प्रसादी प्रगट होई हमे मार सा सुख पाए हर नामे सच मृत पीजे है कर दुख निवारण हारा गुरमुख से शब्द विचारा सब कुछ आपे आप वरते गुरमुख तन मन पीजे है माया गण जले संसारे गुरमुख ने मेरे शब्द विचारे अंतर सांत सा सुख पाया गुरमति नाम लीजे है इंदर इंद्रासन बैठे जमका पाओ पावे जमना छोटे बकर कमावे सदगो से भी पेटे का मुगत पाइये हर रसना पीजे हे मन मन को अंतर भगत न हो गुरमुख ज्ञान गुरु भगत संसुख हो पवित्र पावन साहे गुण बाणी गुरमत अंतर पीजे है ब्रह्म विष्णु महेश विचारी त्रैगुण बदक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एक है जाता अंदर नाम बीजे बेदा बेद पढ़े हर नाम न बुझे माया कारण पड़ पड़ लूजे अंतर मैला ज्ञानी

जीवई, बिन हर नाम मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी क्यों, गुर बिन जीवा माओ। मैं गुरबाणी उधार है, गुरबाणी लाग रहाओ। हर हर नाम रतन है, गुर तुठा देवे माए। मैं तर सचे नाम की, हर नाम रहा लिवलाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नाम दे दृढ़ाए। जिस प्राप्त सो

नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो राग सूही महला पंजवा अष्टपदियां घर दसवां काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जे भुली जे चुकी साई पीत है जी काडिया जिन्ना नेहो दजूना है दू जाने लगा चूर मरो से वांडिया हाओ ना छोड़ो कंत पसारा सदा रंगीला लाल प्यारा इहो मह

रहो जियो। क्या गुण तेरे विथरा हौ क्या क्या ना तेरा ना हो जियो। इकत टोल ना बुढ़ा हौ सतगुरु बाणे है तेरे जाओ जियो। सोना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो। से वस्तु सह दितियां।

कह सुनी। मैं दर्शन भूख प्यास गुर सबदी सौ पाया सच नानक की अरदास। सुही महला पंजवा गुणवंती जो दिसै गुर सिखड़ा।

पंच मिले सुख पाया, साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया। अणदिन मेल पया मन मानिया, करमंदर सुहाए पंच शब्द धुन अनहद वाजे, हम घर साजने आए। आव मीत प्यारे मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो तां प्रभ भावो सुहिलड़ा जुग चारे। अपने घर आया थान सुहाया, कारज शब्द सुवारे ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रै भवन।

तन मन अमृत पीना, आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा, सच खेल तुम्हारा अगमी अपारा, तुद बिन कौन बुझाए, सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाय, काल बिकाल भय दीवाने मन राख्या गुर ठाए, नानक अवगुण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए, राग सुही महला पहला घर तीजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद

दुख आप पछाणे। प्रभ जैसे अविनाशी एक ओंकार। सतगुर प्रसाद राग सूही संत महला पहला घर चौथा। जिन की आ तिन देखिया जग धंधड़े लाया दान।

मन भावे सोई, गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई। सुख सहज आवे साच भावे, सच की मत क्यों टले। स्नान दान सुगयान मजन आप अशल, आप अशल्यो क्यों छल। परपंच मोह बिकार थाके, कूड़ कपट ना दोई। मेरा मन राता गुण रवे, मन भावे सोई। साहब

जिन जग ते उपाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम स्यो मन मान्या हर सेती राता साहेब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायक आप सुरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हमें अवगण आ रे तू सुन प्यारे तुद पावे सच सो

से ते सूजै गुर सबदी सच जानिया साजन होवन अपने क्यों पर कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माहे साजन करे रलिया कर्म धर्म सुभाया अठ सठ तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पाया

कोई कीमत सो पावे आप जनावे आपे अपुल ना पुल जय जयकार करे तुद भावे गुर कै शब्द अमुल।

सुना होई गुरमुख बूझे कोई हमे मार पछाणिया करनी कार कमावे शब्द समावे अंतर को जाने आ।

राम मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए सच वरते सब थाई सच्चा सिंगार करे दिन राती कामन सच समाई हर सुखदाता

जिन जान तेरे पाया। जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफले हा है कारी जियो दृष्ट धार, अपना दास वारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया।

दूसर को नाहे कस आगे बेनती रव्या श्रब थाय। कथा पुरातन सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी सत भजन नानक है प्रगट सब माही। प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिन को पौ नाही। बिलावल महला पंजवा बंधन का

वर्ण श्रम शास्त्र सुन दर्शन की प्यास रूप न रेख न पंच तत् ठाकुर अविनाश ओहो स्वरूप संतन कह विरले जुगीसुर।

पूरन भंडार चरण कमल मन तन बसे प्रभगम पार बस्त कमावत सब सुखी किश ऊन दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सब करहे सथां सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया बिलावल महला पंजवा।

रहाउ। बाह पकड़ प्रव काढ़िया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा, कर तर मस्तक थापया नाम दीनो दान। सब सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रव राखता भगतन की आन। जो जो चित वै साध जन सो लेता मान रहाउ। शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा।

जवा तरत सुहावी सफल थान पूर्ण पय काम। पौ नाठा भ्रम मिट गया रव्या निद राम, साजना के संग बसत सुख सहज विश्राम। साई घड़ी सुलखनी सिमरत हर नाम रहाउ। प्रगट भय संसार मह फिरते पहनाम, नानक तेस सरनागति घट घट सब जान। बिलावल महला पंजवा।

राहु। सेवद सेव सेव साध सेवो सदा करो किरताय। अपै दान पावो पुरख दाते, मिल संगत हर गुण गाय। रसना

जंत बेचारे बरनासा को एक रूमाई। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंदिरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिए किस कथन ना जाई, जय जय देखा तेरे आसमाई। रहाऊ

पंजवां अगम रूप अविनाशी करता पतत पवेतक निमुख जपाई है चरद सुनियो प्राप्त पेटले संत चरण चरण मन लाई है कित विधि है कित संजम पाई है।

प्रहाव। शरण समर्थ कत सुख दाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राख अपने को, तिसनो लगे न ताती बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्वस संत जना तान माल, नानक जाचक दर्श प्रमंग, संत जना की मिले रवाल। बिलावल महला पंजवां। सिमरत नाम कोड जतन पए, साध संग मिल हर गुण गाए, जमदूतन को त्रास हे रहाओ, जेते पुनः चरण से कीने, मान तान प्रभ के चरण गए। आवन जान परम पौ नाठा, जन्म मरण के किल विग दहे, निरपौ होए पजो जगदीश, यो पदार्थ बड़ पाग लहे।

कर किरपात प्रभु दीने जगत उधार नमखंड प्रताप। दुख बिन से सुख अनंद प्रवेशा त्रिसन बुझी मान तान सज त्राप। नाद को नाथ सरन समरथा सगल सृष्ट को माई बाप। भगत वचन पै भंजन स्वामी गुण गावत नानक आलाप। बिलावल महला पंजवा जिस ते उपजा तिसे पछान। पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम होए कल्याण। राव गुरपुरा भेट्यो बड़भागी अंतर जामी सुगुण सुजान। हाथ दे राखे कर अपने बल समरथ नमाणिया को मान। भ्रम पै बिन सगए किन पीतर अंधकार प्रगटे चानान।

नगर में आप बार फोन आपन प्रा मेरे को सगल बसेरा। नगर में आप बाहर फोन आपन प्रा मेरे को सगल बसेरा। आपे ही राजन आपे ही राया, कह कह ठाकुर कह कह चीरा। का कहो द्राओ का स्यो बल बंचा, जय जय पेखो तय तय नेरा। साध मूरत गुर भेट्यो नानक, मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। बिलावल महला पंजवां। तुम समरत

जो जो कीनो सो तुम जान्यो, पेखे ठौर नाही का टीठ मुकरन। बड़ प्रताप सुनियो प्रभु तुमरो, कोट अगा तेरो नाम हरण। हमरो स्वाओ सदा सद पूलन, तुमरो बिरद पदत उदरन। करुणा में कृपाल कृपा निद, जीवन पद नानक हर दर्शन। बिलावल महला पंजवा।

परमेश्वर सतगुर हम बारक तू पिता कृपाल रहाओ। मोहे निर्गुण गुण नाही कोई पहुँच न सको तुमरी काल। तुमरी गत मित तुम ही जानो जियो पिंड सब तुमरो माल। अंतर जामी पुरख स्वामी आन बोलत ही जानो हाल। तान मान शीतल होए हमारो नानक प्रभु जी नजर निहाल। बिलावल महला पंजवा राग सदा प्रभ अपने साध तू हमरो प्रीत मन मोहन तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ।

अतुल बढ़ाई चुत बिनासी नानक उजरे हर की जया बिलावल महला पंजवा बिन भय भगती तरन कै

सहज कर आवो साचे नाय बढ़ाई पावो आपन बूझे लोग बुझावे मन का अंधा अंध कमावे दार घर महल ठौर कैसे पावे हर जियो सेविए अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी जोत समानी जिस नाल गया चले पै नामी साचा नाम साचे शब्द जाने आपे आप मिले चूके अभिमाने गुरमुख नाम सदा सदा बखाने सतगुर सेवे दूजी दुरमत जाई अवगुण काट पापा मद खाई कंचन काया ज्योति जोत समाई सतगुर मिले वड्डी वड्याई दुख काटे हिरदय नाम वसाई नाम रते सदा सुख पाई।

जागे ज्ञान तातले बलैया। तस्कर हेरुआ लुकाने गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया। हर हर नाम पोत बोहेता केवल शब्द गुर पार लंगैया। जाम जागाती नेड़ ना आवै ना को तस्कर चोर लगैया। हर गुण गावै सदा दिन राती मैं हर जस कहते अंत न लहिया। गुरमुख मनुआ इगद कर आवै मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मां त्रिपत श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है पीने रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोहे व्यापे तुरिया गुण है गुरमुख लहिया। एक दृष्ट सब सम कर जाने नदरिया वैसा ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई गुरमुख आपे लख लखैया। नानक दीन दयाल पए है भगत पाए हर नाम समैया। बिलावल महला चौथा। हर हर नाम शीतल जल त्या भव हर चंदन वास सुगंध गंधैया। मिल सत संगत परम पद पाया मैं हिरण पलास संग हर बुहिया। जाप जगन्नाथ जगदीश गोसैया।

निकट सब चंदन हुईया साकत कूड़े ऊब सुख हुए मन अभिमान बिछड़ दूर गईया। हर गत मित करता आपे जाने सब बिद हर हर आप बनैया। जे सतगुर भेटे सो कंचन होवे जो तुर लिखिया सो मिटे ना मटैया। रतन पदार्थ गुरमत पावे सागर भगत भंडार खुलैया। गुर चरणी एक सरदा उपजी मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया।

मनमो पाखंड परम वेगुते लोभ लहर ना पार बुढ़ैया। नाम जप नामे गत पाव सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया। होमै जाय ता निर्मल होवै गुरमुख परचे परम पद पैया।

गुर का शब्द तन भस्म दृढ़ैया। अमर पिंड पए साधु संग, जन मरन दो मिट गईया। मेरे मन सा संगत मिल रहीया। कृपा करो मासूदन माधो, मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रहा। तजय ग्रसत पया बनवासी, एक खिन मनुआ टिके नाट गईया। ताव ताए तदे कर आवे, हर हर साधु शरण पवैया। तिया पूत छोड़ सन्यासी, आसा आस मन बहुत करैया। आसा आस करे नहीं बूझै, गुर कै शब्द निराश सुख लहिया। उबजी तर्क दिगंबर हुआ, मन दह दिस चल चल गमन करैया। पर भवन करे बूझे नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया। आसन सिद्ध सिखे बो तेरे, मन मांग रिद सिद्ध चेटक चिटकैया। त्रिभुत संतोख मन सांत न आवै, मिल साधु त्रिभुत हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेरज सेत ज्योत पुज, सावरण रूप जी जंतो पैया। साधु शरण परे सो उबरे, खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया। नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन, औजात रविदास चमयार चमैया। जो जो मिले साधु जन संगत, तन तन्ना जट।

भगत वशल आगो नाम कहियत है सरन प्रभु तिस पाशे पैया की मां सिंगार करे प्राखु जिया मन दीप गुर ज्ञान बलैया रसरा भोग करे प्रा मेरा हम तिस आगे जियो कट कट पैया हर हर हार कंठ है बनया मन मोती चूर वड गहन गहनैया हर हर सरदा सेद वशाई प्रभ छोड़ न सके बहुत मन पैया कह प्रभ अवर अवर किश की जय सा बाद सिंगार फोकट फोकटैया कियो सिंगार मिलन के ताई प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया हम चेरी तू अगम गुसाई क्या हम करे तेरे बस पैया दया दीन करो रख लेव नान हर गुर सरन समैया बिलावल महला चौथा मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया गुर देख सरदा मन पूरी ज चात्रक प्रयो प्रे बूंद मुग पैया मेल मेल सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रा मेले मैं तिस आगे सिर

कोल कोले अंग लैया जिनका ठाकुर कृपा तारी बा पकर नान कड लैया राग बिलावल महला पंजवा अष्टपदी कर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

पेदा आसर दसा खाट तीन समाए सो बूझै जैसे आप बुझाए तीन समावे चौथे वासा प्रणतना नमता के दासा पंचमी पंच भूत बेताला आप गोचर पुरख नराला।

तेस मैं मनुआ रया ले बलाए प्रण स्नान काल न खाए नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ महाबलवंडा।

ससियर गगन जो त्यो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसे सो तिस ही माहे मन मुंग भूले आवे जाहे घर दर थाव तिर थां सुहावै आप छाणै जां सतगुर पावै जय आसा तै बिनस बिनासा फूटे खप्पर दुबदा मनसा ममता जाल ते रे उदासा प्रणत नानक हमता के दासा बिलावल महला तीजा वार सत घर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदित वार आद पुरख है सोई आपे वरत अवर न कोई ओत पोत जग रया परोई आपे करता करे सोई नाम रते सदा सुख होई

सोमवार सातरया समाए तिस की कीमत कही ना जाए आख आख रहे साबले बलाए जिस देव तिस पल पाए अगम गोचर लखया ना जाए गुर के शब्द हरया समाए मंगल माया मोह पाया आपे सिर सिर तंदे लाया आप बुझाए सोई बूझे गुर के शब्द दर

साहिब की सेवक रहे सरनाई, आपे बख्शे दे बड़ियाई। तिसते ऊपर नाही कोए कौन डरे, डर किसका होए, गुरमती शांत बसे शरीर।

सहज मिलाया हर रस हर त्रा पै राम मानस जन्म हर पाई है हर रावण वेरा राम गुरमुख मिल सोहागणी रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म न पाया तिन भाग मदेरा राम हर हर हर प्रभ राग प्रभ नानक जन तेरा राम हर हर हर हर राग प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभग मंदिर डाया मन तन रंग पीना राम भगत वशिल हर नाम।

नमस्कार सदगुरु प्रसाद सखी आओ सखी वसाओ सखी असी पिरका मंगल गावे तज मान सखी मद आपने प्रीत भाव है तज मान मोह बेकार दूजा सेवेक निरंजन लग चरण सरण दयाल प्रीतम सगल दुरत बखंडन होए दास दासी तज उदासी बौड़ विधि ना तावा नान प्यंपै करो कृपा ता मंगल गावा अमृत प्रे का नाम मैंदले टोहनी ओ जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी मां विचित्र चंचल अनक भाव दिखावे टीर मीठी मने लागे नाम लैन आया वे।

ਰਹੁ ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੂੰ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ ਮੋਹਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਓ। ਕਹਿ ਪੈ ਕਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਸੁਣ ਤੋ ਹੈ ਰਘੁਰਾਇਓ। ਲਹਿਓ ਸਹਿਸਾ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਤੋਰੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਹੋਣਾ ਸਾ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਸੀ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਕਹਾਂ ਦਿਖਾਇਓ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਾ ਇਹ ਕੋਠਾਣਾ ਗੁਰ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ। ਨਾਉ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਇਕਠਾਈ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕੈਠੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕਣਕ ਅਨਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਇਓ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਗੁਰ ਖੋਈ ਹੈ ਇਵ ਤੱਤੇ ਤੱਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਔਧ ਕਟਹਿ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਪੇਲਾ ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰਲਾ ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਇਆ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਧਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਈ ਪਿਆਈ ਹਰ ਰਸ ਅਕਥਕਤਾ ਤੇ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੀ ਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਵਸੀਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁੱਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੋਰੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਹਾਓ। ਪੰਚ ਬਿਖਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾ ਰੱਖੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ। ਖੇਦ ਕਰੈ ਔਰ ਬਹੁ ਸੰਤਾਵੈ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਅਨਕ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਛੋਡ ਹੈ ਕਤਹੁ ਨਾਹੀ। ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਣਤਾ ਕੀ ਓਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ ਜਾਹੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੋਹੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ। ਸੰਤੀ ਮੰਤ ਦਿਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ। ਜੀ ਤਲੇ ਉਹ ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਦੀ ਸਹਿ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਇਆ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਸਤੀ ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਰਹਾਓ ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਰੋ ਏਕ ਮਹਿਲ ਨੀ ਮਾਨੋ। ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ ਏਕ ਮਹਿਲ ਗਰੀਬਾਨੋ। ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤ ਬਖਤਾ ਏਕ ਮਹਿਲ ਖਲਹੋਤਾ। ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਸਭ ਕਿਛ ਗ੍ਰਹਿਜ ਏਕ ਮਹਿਲ ਕਛੂ ਨਾ ਲੇਤਾ। ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਾਂ ਕਰੇ ਵਪਰੀ ਖਿਲਾ ਵਣਹਾਰੋ ਜਾਣੈ। ਜੈਸਾ ਭੀਕ ਕਰਾਵੇ ਬਾਜੀ ਕਰ ਉਹ ਤੈ ਸੋਹੀ ਸਾਜ ਆਨੈ। ਅਨਕ ਕੋਠਰੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰੀ ਆ ਆਪ ਹੁਆ ਰਖਵਾਰਾ। ਜੈਸੇ ਮਹਿਲ ਰੱਖੈ ਤੈਸੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਆ ਇਹ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਨ ਕਿਸ਼ਕੀ ਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਸਵਾਮੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕਾਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਛੋੜ ਛੋੜ ਰੇ ਬਿਕੁਆ ਕੇ ਰਸੂਆ। ਉਰਜ ਰਹੋ ਰੇ ਬਾਵਰ ਗਾਵਰ ਜਿਉਂ ਹਿਰ ਕਿਰਖੈ ਹਰਿਆਇਓ ਪਸ਼ੂਆ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਜੈ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੈ ਤੇਰੇ ਤਸੂਆ। ਨਾਂਗੋ ਆਇਓ ਨਾਂਗ ਸਿਧਾਸੀ ਫੇਰ ਫਿਰਿਓ ਅਰਕਾਲ ਗਰਸੂਆ। ਭੇਖ ਭੇਖ ਰੇ ਕੋ ਸੰਭ ਕੀ ਲੀਲਾ ਰਾਚ ਮਾਚ ਤਿਨ ਹੋ ਲੋ ਹਸੂਆ। ਸੀਜਤ ਡੋਰ ਦਿਨਸ ਅਰਣੀ ਜੀ ਕੋ ਕਾਜ ਨ ਕੀਨੋ ਕਸ਼ੂਆ। ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਹੀ ਵਿਰਧਾਨੋ ਹਾਰਿਓ ਉਕਤੈ ਤਨ ਖੀ ਨਸੂਆ। ਜਿਉ ਮੋਹਿਓ ਮੋਹਨ ਮੋਹਨੀ ਬਾਲਾ ਉਸ ਤੇ ਕਟੈ ਨਾਹੀ ਰੁਚ ਚਸੂਆ। ਜਗ ਐਸਾ ਮੋਹਿ ਗੁਰੈ ਦਿਖਾਇਓ ਤਉ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਤਜ ਗਰਬਸੂਆ। ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਇਓ ਦ੍ਰਿੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਭਗਤ ਹਰ ਜਸੂਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਜ ਬਿਨ ਕਵਣ ਹਮਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਰਹਾਓ
अंतर की बे तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले, सर्ब सुखा मैं तुझते पाई, मेरे ठाकुर अगह अतोले। भरना साकू तुमरे रंगा, गुण निधान सुखदाते, अगम्य गोचर प्रभ अवनासी, पूरे गुरते जाते। भ्रम पौ काट किए निह केवल, जब ते हो मैं मारी, जन्म मन को सो छुखो सहसा, साध संगत दर सारी। चरण पखार करो गिर सेवा, बार जाऊं लख बरिया, जे प्रसादे पौ जल तरिया, जन नानक प्रे संग मिरिया। गौड़ी महला पंजवा, तुझ बिन कवन रीचा वै तो ही, तेरो रूप सगल देख मोही, राव सुरग पयाल मृत प्रभु मंडल, सर्व समानो एक है ओही। सेव सेव करत सगल कर जो है, सर्व मया ठाकुर तेरी दोही। पतित पावन ठाकुर नाम तुमरा, सुखदाई निर्मल सीतलोही, ज्ञान ध्यान नानक वड्याई, संत तेरे स्यों गाल गलोही। गौड़ी महला पंजवा, मिलो प्यारे जिया, प्रभ किया तुम्हारा थिया रहो, अनक जन्म बो जोनी प्रमया, बहर बहर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है, देहो दरस हर राया। सोई हुआ जो तिस पाणा, अवरणा किनका कीता, तुमरे पाणे परम मोय मोहया, जागत नाहीं सूता। बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे, कृपा निध दयाला, राख लियो पिता प्रभ मेरे, अनाथ है कर प्रदपाल। जिसनु तुम्हें दिखायो दर्शन, साध संगत कह पाछे, कर कृपा तूर दियो संतन की, सुख नानक हे बांछे। गौड़ी महला पंजवा, हो ता कै बलिहारी, जा कै केवल नाम आधारी रहो, मैं माता की कीत गणिए, जन पार मरम रंग राते, सुख सहज आनंद तिना संग, उन समसर अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए, जो जन दर्श प्यासा, उनकी शरण परै सो तरिया, संत संग पूर्ण आसा। ता कै चरण परो ता जीवा, जन कै संग निहाला, भगतन की रेण होए मन मेरा, हो प्रभु कृपाला। राज जोवन अवजो दिसै, सबके जग में काटिया, नाम निधान साध नव तन निर्मल, इह नानक हर तन खाटिया। गौड़ी महला पंजवा, जोग जुगत सुन आयो गुरते, मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ, नौखंड पृथ्वी ए तन मैं रविया, निमक निमक नमस्कारा, दीख्या गुर की मंदरा की नी दिड़ो एक निरंकारा। पंच चेले मिल पे कतरा, एक कह वस किए, दस वैरागण आज्ञाकारी, तब निर्मल जोगी थिए। परम जराए चराई विपुता, पंथ एक कर पेखिया, सह सुख सो किन्नी भुगता, सो ठाकुर मस्तक लिखिया। जय पौ नाही तहा आसन बांध्यो, सिंगी अनहत बाणी, तत् विचार डंडा कर राखियो, जुगत ना मन पहाणी। ऐसा जोगी वडभागी भेटै, माया के बंधन काटै, सेवा पूज करो तिस मूरत की, नानक तिस पग चाटै। गौड़ी महला पंजवा, अनूप पदार्थ नाम सुनो, सगल तिहाइ ले मीता, हर औकत जा को गुर दिया, ताकै निर्मल चीता रहो। अंधकार मिट्यो ते तन ते, गुर शब्द दीपक परगासा, भ्रम की जाली ताकी काटी, जाको साध संगत विश्वासा। तारीले पवजर तारु विखड़ा, बोहित साधु संगा, पूर्ण होई मन की आसा, गुर भेट्यो हर रंगा। नाम खजाना भगती पाया, मन तन तिपते अकाए, नानक हर जियो ताको देवे, जाको हुक्म मनाए। गौड़ी महला पंजवा, दया मया कर प्राण पत मोरे, मोहे अनाथ चरण प्रतोरी, अंधकूप में हाथ दे राखो, कशु सियाण प्युक्त न मोरी रहो। करण करावण सब किस तुम ही, तुम समरथ नाही अनहोरी, तुमरी गत में तुम ही जानी, से सेवक जिन भाग मथोरी। अपने सेवक संग तुम प्रवराते, ओत पोत भगतन संग जोरी,
प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसी दृष्टो चंद चकोरी। राम संत में पीत किश नाही एक जन कई में लाख करोरी जाके ही ये प्रगट प्रभ हुआ अंधन कीर्तन रस नरमोरी। तुम समराथे अपार अतूचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक कहो प्रभ की जय कृपा उन संतन के संग संगोरी। गौड़ी महला पंजवा तुम्हार से तीराते संतो निवाहे ले हो मोको पुरख विधाते ओर पहुंचा वो दाते रहो तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख विधाते रखो शरण अनाथ दीन को करो हमारी गाती तारण सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पहते कर कृपा जिस राखो संगे तेते पार पराते। ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किश तुम रह हाथे ऐसा निधान दे मोको हर जन चले हमारे साथे। निर्गुणिया रे को गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवा सहज समायो देव मोको सतगुरु पहे दयाल देव रहाओ काट जीवरी की उदासरो संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचर्ज गुरें दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तिया अन पै ठहरायो मन आज्ञा सर्व सुख पाए दुख ठाओ गवायो जो सो प्रसन्न पै प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किश आवत ना किश जावत सब खेल कियो हरायो कहो नानक आगम आगम है ठाकुर भक्त टेक हर नायो। गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मनता की ओट गही जहरे जिन तारे ब्रह्मंड खंड हर ता को नाम जपी जहरे रहाओ। मन की मत त्यागो हर जन हुकम बू सुख पाइये रे जो प्रभ करे सोई पल मानो सुख दुख ओहि तिहाइये रे कोट पतत उधारे खिन में करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख पंचन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे सब को मात पिता प्रद पालक जी प्राण सुख सागर रे दें दे तोट नाही तिस करते पूर रहे ओ रत्नागर रे। जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी घट घट अंतर सोई रे नानक दासता की शरणाई जाते बिरथा ना कोई रे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबो न मनो विसारे इहां उहां सर्व सुखदाता सगल कटा प्रतपारे रहाओ। महा कष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल शांत सुख हर शरणी जलती अग निवारे गर्भ कुंड नरक ते राखे पव जल पारे उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास विदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म नहारे काम क्रोध लो मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सद बलिहारे। राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म ए रत्न अमोलक साध संगत जप एक खिना रहो सुत संपत बनता बिनोद छोड़ गए बो लोग भोग है वरगैवर राज रंग त्याग चलो है मूढ़ नंग चोआ चंदन दे फूलिया सो तंतर संगरूलिया मोह मोहया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है। गौड़ी महला पंजमा मन तर तरवे हर नामनो सागर लहर संसा संसार गुरबोहित पार ग्रामनो रहाओ। कल काल कांदे आरिया गुर ज्ञान दीपक उजे आरिया बिख बिख्या पसरी अतकणी उभरे जप जप हर गुणी मत वारो माया सोया गुर भेटत परम पुख होया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक
सेवा थारी गुर है टेक रहाओ। अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया, मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साधिया। बख्शीस वजो मिल एक नाम, सुख सहज आनंद विश्राम, प्रभ के चाकर से पले नानक तिन मुख उजले। गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का, अवरज करम कमावणो अवरज करम करण करावणो, तिन में पाव है जाम करहाओ। अवरज तन नहीं पाई है वड्ढे पाग हर त्याई है, लाख हिकमती जानी है आज्ञा तिल नहीं मानी है। अहंग बुद्ध कर्म कमावणे ग्रह बालू नीर बहावणे, प्रभ किरपाल किरपा करे नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया, नामो हो नाम साहिब को प्राण धरिया रहाओ। करण करावन तू ही एक, जी जंत की तू ही टेक, राज जोवन प्रभ तू तनी, तू निर्गुण तू सरगुणी, इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे। अंतर जामी प्रभ सुजान, नानक तकिया तू ही तान। गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है, संत संग हर मन वसै, परम मोह पौ साधिय रहाओ। वेद प्राण सिमरत सुने सब ऊच विराजित जन सुने, सगल अस्थान पै पीत चीन, राम सेवक पै रहत कीन। लख चौरासी जोन फिरें गोबिंद लोक नहीं जन्म मरहें, बल बुद्ध स्याण पाव मैं रही, हर साध शरण नानक गई। गौड़ी महला पंजमा मन राम नाम गुण गई है, नीत नीत हर सेवी है, सास सास हर त्याई है रहाओ। संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा परम नसै, संत प्रसाद हर जापी है, सो जन दुख न व्यापी है। जाको गुर हर मंत्र दे सो उभरिया माया अगंते, नानको ब्रह्मया कर मेरे मन तन वासै नाम हर। गौड़ी महला पंजवा रसना जपिए एक नाम, इहां सुख आनंद कणा, आगे जी कै संग काम रहाओ। कटिए तेरा अहंग रोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर जा जिन जन चाखिया ताकि तृष्णा लाथिया, हर विश्राम निध पाया सो बहरना कत ही ताया। हर हर नाम जाको गुर दिया, नानक ताका पहु गया। गौड़ी महला पंजवा जाको विसरै राम नाम ताहू को पीर, साध संगत मिल हर वैसे गुणी गहीर रहाओ। जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताके करतल नव निसिद, जो जाने हर प्रभ तनी किश नाही ताके कमी। करण हार पछानिया सर्व सुख रंग माणिया, हर तन जाके ग्रह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै। गौड़ी महला पंजवा गर्भ बड़ो मूल इतनो, रहन नहीं गो कितनो रहाओ। बेवर्जत बेद संतना हुआ हूँ स्यो रेहितनो, हार जुआर जुए बिदे इंद्री वस ले जितनो, हरण परण संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो। नानक उदरे साध संग कृपा निध में जितनो। गौड़ी महला पंजवा मोहि दासरो ठाकुर को, तान प्रभ का खाना रहाओ। ऐसो है रे खसमा मारा खिन में साथ सवार नहारा, काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा। शरण परयो ठाकुर वजीरा तिना देख मेरा मन तीरा, एक टेक को आधारा जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते इह मन हो रै रहाओ। अज्ञानी हारिया अनक विधि कटोरे, अज्ञानी मानुख भया जो नाही सोलोरे, रैण अंधारी कारिया कवन जुग जित पोरे। परम तो हारिया अनक विधि कटोरे, कहो नानक कृपा पई साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा चिंता मन करुणामय रहाओ,
दीन दयाला पार ब्रह्म जा कैसे मन सुख भई अकाल मूर्ख अकाल पुरख आगाध बोध सुनत जसो कोट अग खई कृपा निध ब्रह्मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाई जा दिन विसर प्राण पत सुखदाता सो दिन जाता जाए रहाओ एक रहन के पाहन तुम आए बहु जग आस वधाई ग्रह मंदर संपै जो दिसे ज्यों तरवर की शाई तन मेरा संपै समेरी बाग मिलख सब जाए देवनहारा विसरियो ठाकुर खिन में होत पराए पैरे बागा कर इशनाना चोआ चंदन लाए निरभउ निरंकार नहीं चीनिया ज्यों हस्ती नावाए जो होए कृपालता सतगुरु मिले सब सुख हर के नाए मुक्त पया बंधन गुर खोले जन नानक हर गुण गाए गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए रतन जन्म सफल गुर किया दर्शन को बरहरिय रहाओ जेते सास ग्रास मन लीता तेते ही गुण गाइए जो होए दयाल सतगुरु अपना ता इह मत बुद्ध पाइए मेरे मन नाम ले जंबन ते छूटे सर्व सुखा सुख पाइए सेव स्वामी सतगुरदाता मन बंचत फल पाइए नाम इष्ट मीत सुतकर्ता मन संग तुहारे चाले कर सेवा सतगुर अपने की गुर ते पाइए पाले गुर कृपाल कृपा प्रवधारी बिन से सर्व अंदेसा नानक सुख पाया हर कीर्तन मिट्यो सगल कलेशा राग गौड़ी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ कोट जोरे लाख करोरे मन ना होरे परे परे ही को लुजी है सुंदर नारी अनक प्रकारी पर ग्रह बेकारी बुरा पला नहीं सुजी है अनक बंधन माया पर मत पर माया गुण निध नाही गाया मन विखे ही मैं लुजी है जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजी है गौड़ी महला पंजवा सबों को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड तर हो काहू जाप काहू ताप काहू पूजा होम नेम काहू ओ गौण कर हो काहू तीर काहू नीर काहू वेद विचार नानका भगत प्रेहो गौड़ी महला पंजवा गुण कीरत निदमोरी रहाओ तू ही रस तू ही जस तू ही रूप तू ही रंग आस उठ प्रवतोरी तू ही मान तू ही तहन तू ही पत तू ही प्राण गुर तूटी लै जोरी तू ही ग्रह तू ही बन तू ही गाओ तू ही सुन है नानक नीर नीरी गौड़ी महला पंजवा मातो हर रंग मातो रहाओ ओही पियो ओही खियो गुरे दियो दान कियो कोहाओ स्यो मन रातो ओही पाठी ओही पोचा ओही प्यारो ओही रुचा मन ओहो सुख जातो सहज कील अनंद खील रहे फिर पहि मेल नानक गुर शब्द प्रातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर नाम लेहो मीता लेहो आगे बिखम पंथ पैया रहाओ सेवत सेवत सदा सेव तेरे संग वस्त है काल कर सेवा तु साधकी हो काटिए जमजाल होम जग तीरथ किए बिच होम है बदे विकार नरक सुरग दोय पुंचना होए बहुर बहुरे अवतार शिवपुरी ब्रह्म इंद्र पुरी ने चल को थाओ नाहें बिन हर सेवा सुख नहीं हो सकत आवै जाहें जैसो गुर उपदेसिया मैं तैसो कहया पुकार नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुख रे हरख सोख आन मृत दुख सुख चित संसर गुर मिले रहाओ जौलो हो किसो चौचित वो तौलो दुखन परे
जो किरपाल गुर पूरा पेटिया तो आनंद सहजे जे तीसियान कर्म हो किए ते ते बंद परे जो साधु कर्म स्तक धरियो तब हम मुक्त पाए जो लो मेरो मेरो कर तो लो बिख केरे मन तन बुद्धि अर्पी ठाकर को तब हम सहजे सोए जो लो पोटे उठाई चलियो तौलो डान परे पोट डार गुरपुरा मिलिया तो नानक निरपय गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आगियो रहाओ मान अपमान दो समाने मस्तक डार गुर पागियो संपत हरख न आवत दुखा रंग ठाकुर लागियो बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दिष्टा गियो निरपौ पय संत परम डारियो पूरन सरभाग्यो जो किश करते कारण कीनो मन बुरो न लागियो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जागियो जन नानक ओढ़ तुहारी परियो आए पयो शरणागियो नाम रंग सहज रसमाणे फिर दुख न लागियो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल विसारी कर मस्तक गुर पूरे धरियो मन जीतो जग सारी तृप्त अखाई रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूक है अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मुके अचरजी एक सुनो रे पाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकर जो भेटी हो तो रे विसर गई तात पराई कहो ना जाई ए अचंपो जो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच पहे वेगासा गौर निदान हृदय राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उभरत राजा राम की शरणी सर्वलोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ शास्त सिमरत वेद विचारे महापुरखन इयों कहया बिन हर भजन नाई निस्तारा सूख न किन्हु लहया तीन पवन की लक्ष्मी जोरी बूझत नाही लहरे बिन हर भगत कहाँ थित पावे फिर तो पैरे पैरे अनक बिलास करत मन मोहन पूर्ण होत न कामा जल तो कबू न बूझत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता यह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की तूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको ए बिद को समझावे करता हुए जनावे रहाओ अनजानत किश इन्हें कमानो जब तब का सुना साधा दै दिस लै ए मन दौरायो कवन कर्म कर बाधा मन तन तन भूमिका ठाकुर हौ इसका ए मीरा परमो का सूजस नाही ए पैकर पे पैरा जब एक हां कमावन परया जब एक अशुन होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किश आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन ए रच नरचाया कहो नानक करण हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हार बिने अवर क्रिया बिरथे जप तप संजम कर्म कमाने ए ऊरे मुसे रहाओ भरत नेम संजम में रहता तिनका याड न पाया आज्ञा चलन और नहीं पाई ऊहा का मन आया तीर्थ नाए और तरणी परमता आज्ञा ठोर ना पावे ऊहा काम न आवे ए विद ओह लोगन ही पति आवे चतुर्वेद मुख बचनी उचरे आगे मैल न पाइए बूझे नाही एक सुधाकर ओ सगली चाक जकाइए नानक कह तो ए विचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुरसेवो और नाम त्यावहो त्यागहो मनहो गुमानी गौणी महला पंजवा माधव हर हर हर मुख कहिए हम ते कछु न होवे स्वामी
ज्यो रख हो त्यों रही रहाओ। क्या किश करे के करने हारा, क्या इस हाथ विचारे, जित तुम लाभो तेती लागा, पूर्ण खसम हमारे, करो कृपा सर्व के दाते, एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती हर पै, अपना नाम जपावो। राग गौड़ी माझ महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

ਬਿਰਧ ਰਖਾਇਆ ਜੀਉ, ਪੂਰਨ ਸਭਨੀ ਜਾਹੀ ਜੀਉ, ਕਿਉਂ ਪੇਖਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਵਣ ਸੁਖਰਨੀ ਜੀਉ, ਸੰਤਾਂ ਦਾਸੀ ਸੇਵਾ ਚਰਨੀ ਜੀਉ, ਇਹ ਜੀਉ ਵਤਾਈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਜੀਉ, ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਈ ਜੀਉ, ਪੋਥੀ ਪੰਡਿਤ ਬੇਦ ਖੁਜੰਤਾ ਜੀਉ, ਹੋਏ ਵੈਰਾਗੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵੰਤਾ ਜੀਉ, ਗੀਤ ਨਾਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੰਤਾ ਜੀਉ, ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਜੀਉ, ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਜੀਉ, ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਲੱਗ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰੇ ਜੀਉ, ਭਰਮ ਪਉ ਕਾਟ ਕੀ ਨਿਰਵੈਰੈ ਜੀਉ, ਗੁਰਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੂਰਾਈ ਜੀਉ, ਜਿਨ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਜੀਉ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤਾ ਜੀਉ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਸੁਕਰਨੀ ਜੀਉ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਜੀਉ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਝ, ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ, ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਸਾ ਸਾ ਚਿਤਾਰੇ ਜੀਉ, ਸੰਤ ਦਿਉ ਸੰਦੇਸਾ ਪੈ ਚਰਨਾਰੇ ਜੀਉ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿਤ ਬਿਦ ਤਰੀਐ ਜੀਉ, ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰੇ ਆਨੰਦਾ ਜੀਉ, ਵਣ ਤਿਣ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਸੁਖ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਜੀਉ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਇਹ ਮਨ ਬਿਗਸੰਦਾ ਜੀਉ, ਪੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸੁਖ ਲਈਐ ਜੀਉ, ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਕਰੀਨੇ ਸੇਵਾ ਜੀਉ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਦੇਵਾ ਜੀਉ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਜਪ ਲੇਵਾ ਜੀਉ, ਬਿਨੋ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਕਹੀਐ ਜੀਉ, ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਜੀਉ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਸਭ ਦੁੱਖ ਪਰਹਰਿਆ ਜੀਉ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਪ ਧਰਿਆ ਜੀਉ, ਇਹ ਅਜਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹੀਐ ਜੀਉ, ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਮਨ ਮਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ, ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੀਉ, ਪੇ ਵਾਰੇ ਜੀਉ, ਵਿਸਰਣਾਈ ਪ੍ਰਪਣ ਆਧਾਰੇ ਜੀਉ, ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ ਜੀਉ, ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਮਨ ਜੀਵੇ ਭਾਈ ਜੀਉ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੋ ਹਰ ਭਾਈ ਜੀਉ, ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆ ਜਾਈ ਜੀਉ, ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ ਜੀਉ, ਇਹ ਨਿਦਾਨ ਜਪੈ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜੀਉ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਇਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਜੀਉ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਜੀਉ, ਆਠ ਪੈਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਜੀਉ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥਾ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਉ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੁ ਭਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀਉ, ਹਰ ਤਨ ਰਾਸ ਸੱਚ ਵਪਾਰਾ ਜੀਉ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਾ ਜੀਉ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਮਾਣ ਕਰਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਮਾਣ, ਜੋਰ ਤੁਮਾਰੈ ਸੁਖ ਵਸਾਂ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਾਓ, ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਤੀਆ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਆ, ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਨ ਲੱਦੀਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੜਿਆ, ਦੇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਸੇ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੜਿਆ, ਕੋਈ ਜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀਆ ਮੋਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ, ਇਕਸ ਦੋ ਚੌਕਿਆ ਗਣੀ ਸਭ ਇਕਤ ਸਾਧ ਮੁੱਠੀ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਾ ਏ ਰਸੀੜਾ ਕਾ ਵਿਰਲਾ ਜਾਏ ਬੁੱਠੀ, ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਦਰਸੋਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਰੰਗਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਬਲ ਜਾਤ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਜ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਆਠ ਪੈਰ ਆਰਾਧੀਐ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰਹਾਉ, ਜਿਤ ਕਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਭਾਵਾ ਥਾਉ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨਿਰ ਨ ਆਵਈ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਪੈ ਆਰਾਧ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮੇ ਅਗਾਦ, ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਸਾਈਆਂ ਨੱਠੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ, ਤੱਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਗੁਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਈ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਗੁਰ ਤੁੱਟੈ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਰਿਹਾਰ, ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਜਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ, ਰਾਓ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਿੰਦਿਆਂ ਹੋਆ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ, ਹਰ ਜਾ ਸੁਣੀਐ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ, ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਫਲਾ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਜਿਸ ਮਾਏ, ਕਿਉਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਐ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਜਾਹੇ, ਜਿਸ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਜੀਵੀਐ ਪਹੁ ਜਲ ਪਾਈਏ ਪਾਰ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਦਾਰ ਹੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ, ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਜਸ
संत जना की रास नानक उबरे नाम जप दर सच्चे सवास गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे छेती रत्या मिलिया निथावें थाओ राओ होर सासा फिकिया तन मन फिका होए विण परमेश्वर जो करे फिर सो जीवन सोए अंचल गए कै साधका तरना ए संसार पार ब्रह्म आराधी है उधर सब परवार साजन बंद सुमित्र सो हर नाम हिरदय दे औगण सब मिटाए कै पर उपकार करे मालक जाना थे ओ कर हर के चरण निधान नानक जाचक दर तेरे प्रभ तुदनो मंगे दान एक ओंकार सतगुर प्रसाद रागौड़ी महला नौवा साधो मन का मन त्या गौ काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अनस भागो राहो दुख सुख दोनो सम कर जाने और मान अपमाना हरख सोग तेरे अतीता तिन जग तत पछाना उस तत निंदा दुख त्यागे खोजे पद निर्वाना जन नानक की खेल कठन है खिन हूं गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवा साधो रचना राम बनाई एक बिन सह के अस्तर माने अचरज लख्यो ना जाई रहाओ काम क्रोध मोह वस प्राणी हर मूरत विसराई झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रहनाई ज्यो दिस सो सगर विनाश ज्यो बादर की छाई जन नानक जग जान्यो मिथिया रहो राम शरणाई गौड़ी महला नौवा प्राणी को हर जसमान नहीं आवे एनस मगन रह माया में को कैसे गुणगा वैराओ भूत मीत माया ममता स्यो ये विद्या पबंदा वे मृग तृष्णा ज्यो झूठो ये जग देख ता सुटता वे भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूर्ताए विसरावे जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे गौड़ी महला नौवा साधो ये मन गहो ना जाई चंचल तृष्णा संग वस्त है या ते थिर न रहाई राहो कठन क्रोध कट ही के पीतर जे सुध सब बिसराई रतन ज्ञान सब को हिरलीना तास यो कष न वसाई जोगी जतन करत सवारे गुनी रहे गुण गाई जन नानक हर पय दयाला तो सब बिद बनियाई गौड़ी महला नौवा साधो गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरता काहि गवावो रहो पतत पनीत दीन बंध हर शरण ताए तुम आवो गज को त्रास मिटियो जे सिमरत तुम काहि विसरावो ता जे अपमान मोह माया फुन भजन राम चित लावो नान कहत मुकत पंथ ए गुरमुख होय तुम पावो गौड़ी महला नौवा को माई पूल्यो मन समझावे वेद पुराण साध मग सुनकर निमख नहर गुण गावे रहो दुर्लभ दे पाई मानस की बिरथा जन्म सिरावे माया मोह मां संकट बन तास्यो रुचि उपजावे अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो न्यो लगावे नानक मुक्त ताहि तुम मानो जे कट राम समावे गौड़ी महला नौवा साधो राम शरण विश्रामा वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरै हर को न मराओ लोभ मोह माया ममता फुन औ विखियन की सेवा हर कसोग पर सहजे नाहन सो मूरत गुरदेवा सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन और पैसा उस्तत निंदा ए समझा के लोभ मोह फुन तैसा दुख सो के बांधे जे नाहन ते तुम जानो ज्ञानी नानक मुक्त दाए तुम मानो ये बिद को जो प्राणी गौड़ी महला नौवा मन रे कहाँ पयो तै बौरा एहन से औदकटै नहीं जाने पयो लोभ संग होरा रहो जो तन तै अपनो कर मान्यो हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कष्टे रोरे नाहन देखो सोच विचारी रतन जन्म अपने तहारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख न लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे
और सगल जग माया मोहया। निर्भय पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवा, नर अचेत पाप ते डर रे। दीन दयाल सगल पै भंजन, शरण ताहे तुम पर रे। राव वेद प्राण जा सुन गावत, ताको नाम ही है मोतर रे। पावन नाम जगत मैं हर को, सिमर सिमर कसमर सवार रे। मानस दे बोर ने पावे कशो पाव मुकत का कर रे। नानक कैद गाय करुणा में, पाव सागर के पार उतर रे। राग गौड़ी अस्पदिया महला पहला, गौड़ी ग्वारीरी एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, निद सिद्ध निर्मल नाम विचार। पूर्ण पूर रहा बिखमार, त्रिकुटी छुटी बिमल मझार। गुर की मजी आई कार, इन बेद रमत राम रमत मन माने। ज्ञान अंजन गुर शब्द पछान्या, रहो एक सुख मानिया। सहज मिलाया निर्मल बाणी, परम चुकाया लाल पय सुहा रंग माया। नदर पई बिकठाक रहाया, उलट जीवन जीवत मर जा गया। शब्द रवे मन हर स्यों लाग गया, रस संग्रह बिक पर हर त्याग गया। पाए वसै जम का पो पहा गया, साद रहे बाद अहंकारा। चित हर स्यों रहता हुक्म अपारा, जात रहे पथ की आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म तारा, तुझ बिन को न देखो मीत। किस सेवो किस देवो चीत, किस पूछो किस लागू पाए। किस उपदेश सनहा लिव लाए, गुरसेवी गुर लागू पाए। भगत करी राचो हरणाए, सिख्या दीख्या भोजन पाओ। हुक्म संजोगी निज कर जाओ, गर्भगत सुख आत्म ध्याना। जोत पई ज्योति माहे समाना, लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना। करता करना करता जाना, न पंडित न चतुर सियाना। न भूलो न परम भुलाना, कथो न कथनी हुक्म पछाना। नानक गुरमत सह समाना, गौड़ी गौरी री महला पहला। मन कुंचर काया उद्यान, गुर अंकस स शब्द निशान। राज द्वारे सो वसो मन, चतुराई न चीनिया जाए। बिन मारे क्यों कीमत पाए, रहो घर में अमृत लस्क तस्कर लई। नन्ना कारण कोई करी, राखे आप वड़ियाई देई। नील अनिल अगन इकठाई, जल निवरी गुरबोझ बझाई। मन दे लिया रस गुण गाही, ऐसा जैसा घर बाहर सो तैसा। बैस गुफा में आखो कैसा, सागर डूंगर निरपव ऐसा। मुए को कहो मारे कौन, निडरे को कैसा डर कवन। शब्द पछान तीने पौन, जिन कया तिन कैन बखानिया। जिन बूझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया। कीर सूरत मुक्त कनाई, तही निरंजन रहा समाई। निज कर व्याप रहा निज ठाई, उस्तत करें के ते मुन प्रीत। तन मन सूचे साच सुचीत, नानक हर भज नीता नीत। गौड़ी ग्वारी री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए। मन वस दूता दुर मत दोए, मन माने गुरती इक होए। निर्गुण राम गणे वस सोए, आप निवार विचारे सोए। रहाओ मन भूलो बोचित है विकार, मन भूलो सिरिया व्यापार। मन माने हरे कंकार, मन भूलो माया कर जाए। काम विरुद्ध हो रह न ठाए, हर भज प्राणी रस नरसाए। गैवर हैवर कंचन सुत नारी, बो चिंता फिर चल हारी। जुए किरण कच्ची सारी, संपो संची पहे विकार। हर कसो क्यों भै दरबार, सुख सहजे जप हृदय मुरार। नदर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह गुण शब्द जलाए। गुरमुख नाम पदार्थ पाए, बिन नावे सब दुख निवास। मन मुख मूड माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिख्यास। मन चंचल तावत फुन तावे, साचे सूचे मैल न पावे। नानक गुरमुखर गुण गावे, गौड़ी ग्वारी री महला पहला। हम मैं कर त्यान सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए। सगल विगुते पावें दोए, सुख मावे तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगे नाम विसारी। रहो
अदिष्ट दिसै ताँ कहिया जाए बिन देखे कहना बिरथा जाए गुरमुख दी जैसै सुभाई सेवा सुरती क्लिव लाई सुख मांगत दुख अगल होए सगल विकारी हार परोए एक बिना झूठे मुक्त न होए कर कर करता देखे सोए तृष्णा अग्न शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुभाए गुरमति नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण गाए तन मैं साचो गुरमुख पाओ नाम बिना नाही निज ठाओ प्रेम परायण प्रीतम राओ नदर करे तांबो जैनाओ माया मोह सर्व जंजाला मनमुख कुचील कुशित विकराला सतगुरु से वे चुके जंजाला

दीपक उजियाला सर्व निरंतर प्रीतम बाला कर कृपा मेरा चित लाया सतगुरु मोको एक बजाया एक निरंजन गुरमुख जाता दूजा मार शब्द बजाता एक ओकम वर्तें सब लोई एक हस्ती सब ओ पत होई राधो वै कसमे को जान गुर कै शब्द हुक्म पछाण सगल रूप वर्ण मन माही कहो नानक एको सालाही कौड़ी महला पहला अध्यात्म कर्म करे ता साचा मुक्त भेद क्या जान है काचा ऐसा जोगी जुक्त विचार है पंच मार साच उर तहर है रहाओ जिसके अंतर साच वसावे जोग जुगत की कीमत पावे रावसा से को ग्रह उद्यान है करणी कीर्त कर्म समान है एक शब्द एक भीख्या मांगे ज्ञान त्यान जुगत सजागे पहरा च रह न बाहर जाए कीमत कौन रहे लेव लाए आपे मेरे ले परम चुकाए गुर प्रसाद परम पद पाए गुर की सेवा शब्द विचार हम मैं मारे करनी सार जप तप संजम पाठ पुराण कहो नानक अपरम परमान गौड़ी महला पहला खिमा गही व्रत शील संतोखं रोग न व्यापै न जम दोखं मुक्त भय प्रभ रूप न रेखं जोगी को कैसा डर होए रूख बिरख गृह बार सोए रहो निरपो जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिवलावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्व निवारे आप तरह पितरी निस्तारे सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर च रहे सो निरप होए जैसा सेवे तैसो होए नर ने केवल निरपो नाओ अनाथ नाथ करे बल जाओ पुनर्प जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहरे को जाने गुर कै शब्द या पछाणे साचे शब्द दर निशाने शब्द मरै ते निज करवासा आवे न जावे चूके आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसे सुहास निरासा काम क्रोध बिक भूख पियासा नानक विरले मिले उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे ससोई दर्शन देख पाई मत पूरी हर सठ मज्जन चरण धूरी राहो नेत्र संतोखे कलिव तारा जे वा सूची हर सारा सच करनी अभियंतर सेवा मन तिपता स्याला का पीवा जय जय देखूं तें तें साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावे सो जी होई गुरमुख विरला बूझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु पए बिताले गुर कया अवरणी दूजा किस को दे करूं अन पूजा संत इस प्राप्ते पवन तारे आत्म चीन सो तत् विचारे साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हमता के दास गौड़ी महला पहला ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जय प्रभु सिम रहते ही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है राहो बल राजा माया अहंकारी जगन करे बोपार अपारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चांद दान करे जस लेवे बिन गुर अंत न पाए अपेवे आप लाए आपे मा देवे दुर्मत हर नाकस दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद उधारी कृपा तारी भूलो रावण मुगध अचेत लूटी लंका सी समेत गर्भ गया बिन सतगुर हित सहस बाहो मद कीट मै खासा हर नाकस ले नखो विदासा दैत संघारे बिन भगत व्यासा जरा संद काल जमन संघारे रक्त बीज काल नियम विदारे दैत संघार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्जोधन पथ खोई राम न जाने करता सोई जन को दुख पचै दुख होई जन मेजै गुर शब्द न जानिया क्यों सुख पावे परम पुलानिया एक तिल पूले बोर पछतानिया कंस के चांडूर न कोई राम न चीने अपनी पथ खोई बिन जगदीश न राख्या कोई बिन गुर गर्भ न मेटिया जाए गुरमत धर्म तीर झर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चूआ चंदने अंक चढ़ावो

0: पाठ पटंबर पैर हंडावो, बिन हरनाम कहाँ सुख पावो, क्या पैरों क्या ओट दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो रहाओ, कानी कुंडल गलक मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ शिगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश पजै नित कुआरी। दर कर मेर महला सीत सुखाली, एनस फूल बिशा वह माली, बिन हर नाम सुदे दुखाली, हैवर गैवर निजे बाजे, लश्कर नीव खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे, सिद्ध कहावो रे सिद्ध बुलावो, ताज कुलै सिर छत्र बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े हैं पाजा, बिन गुर शब्द न सबर सकाजा, हाँ मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जाने हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जान से अवरे, पर पंच व्यास त्यागे कवरे, भाई मिले सा सच ऐसा चरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिले मल तोई रहाओ, ऊन दो कवल सगल संसार है, धुरमत यगन जगत पर जार है, सो उभरे गुर शब्द विचार है, पिरंग पतंग कुंचर और मीना, मिर्ग मरे सह अपनों कीना, तृष्णा राच दत्त नहीं बीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध बिना से सगल विकारी, पत मत खोवे नाम बिसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गढ़ जीवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूट सर गुण गाए, जो तन विधवा पर को देई, काम दाम चित पर वस सही, बिन हर तृप्त ना कबहु होई, पढ़ पर पन पोथी सिमरत पाठा, वेद प्राण पढ़ सुन थाटा, बिन रसरा ते मन त्रिपता सा, गौड़ी महला पहला हट कर मरे न लिखे पावे, इस तरह
1: गौड़ी महला चौथा। मन कर हला विचारिया, विचार देख समाल, बन फिर थके बन वासिया, फिर गुरमत हृदय निहाल, मन कर हला गुर गोविंद संभाल रहाओ, मन कर हला विचारिया, मन मुख फाथिया महाजाल, गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल, मन कर हला मेरे प्यारिया, सतसंगत सत गुरपाल, सतसंगत लग हर त्याई, हर हर चलै तेरै नाल, मन कर हला वडभागिया, हर एक नदर निहाल, आप छुड़ाए छुटिया सतगुर चरण समाल, मन कर हला मेरे प्यारिया, विच देही जोत समाल, गुर नौ निध ना विखालिया, हर दात करी दयाल, मन कर हला तू चांचला, चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू, हर मुक्त करे अंतकाल, मन कर हला वडभागिया, तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया, जा मारियाड़ा जा मकाल, अंत निदान मन कर हले, अंतर निदान मन कर हले, भ्रम भवे बाहर पाल, गुरपुरख गुरपुरख पूरा भेटिया, हर सज्जन लदड़ा नाल, रंग रतड़े मन कर हले, हर रंग सदा संभाल, हर रंग कदे न उतरै, गुर सेवा शब्द संभाल, हम पंखी मन कर हले, हर तरवर पुरख अकाल, वडभागी गुरमुख पाया, जन नानक नाम संभाल, राग गौड़ी गुआरेरी मोहला पांजवा, अष्टपदिया एक ओंकार, सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद, जाबे मन में करत गुमाना, ताबे बावर फिरत बिगाना,